सो बिल्कुल आपके मैसेजेस और कॉल्स प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा। अच्छा आपको ये बताता चलो कि डीआई हान में हुनरीसी शादी की तकरीब में फायरिंग से 5 अफराद जाबहक हो चुके हैं। डेरा इस्माइल हान थाना गोमल यूनिवर्सिटी के हदोद में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले अफराद पर मुसल्ला मुलजमान की फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाबहक जबकि 2 जख्मी हो चुके हैं। पुलिस जराये के मुताबिक अफसोसनाक वाकया गांव मिलाना में गर्ल्स स्कूल के करीब पेश आया, जहां नामालूम मुसल्ला अफराद ने शादी की तकरीब में जाने वाले अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। सो फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाबहक हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि वाकये में कैसर फजल समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकये के बाद जाबहक अफराद की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी का शाखसाना है, ताहम वाकये के तमाम पहलों से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है।

सो एंजॉय कर लेते हैं। ये सॉन्ग आतिफ असलम की वॉइस में है। सो चलते हैं सॉन्ग ही जाने और इस सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं।

अच्छा जी, मौसम भी काफी खुशगवार हो गया है और इसके अलावा बहुत से इलाकों में वक्फे से बारिश भी जारी है। और ये सॉन्ग जो है आतिफ असलम की वॉइस में है, ये भी बारिश के हवाले से है और इसमें बारिश का जिक्र है।

अच्छा जी सॉन्ग भी जो है एंजॉय कीजिएगा, साथ साथ आपको ये बताते चलूं कि आप लोग 8583 पर भी मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा ऑफिशियल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज भी बिल्कुल फ्री मैसेज करने का मौका है, ठीक है। बिल्कुल नंबर आपको बताते चलो, नंबर है 0345-933-2580 और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0331-5263-40। ये दोनों हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, इस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जिनके पास जिनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, सो बिल्कुल फ्री टेक्स्ट कर सकते हैं।

सन हटक मैसेज कर दिया ठीक छोड़े रहिए तो मन ना सन हटक मैसेज के बोले और बीजीएम में सर कि मैं बीजीएम देता हूँ तो पता ना सर सर जी योर सो गुड बट योर वॉइस इज सो नाइस आई लाइक योर प्रोग्राम गुड लक बाय डेरा मनना थैंक यू मैसेज के बोले सना हटक डेरा मनना लो यहाँ से

तन्हा मरवत हम मैसेज कर रहे हैं तन्हा मरवत डेरा बनाना और वैसे दनी में लार यारनी बांधे दे और वलगी दनी में लार यारनी बने दे और वलगी तरखपल मतलब जमाने बने दे और वलगी बगैर लताना कबल चाता ज अशना वयम बगैर लताना कबल चाता ज अशना वयम जमा दजरप दरवाजे बने दे और वलगी डेरा बनाना मैसेज के बोले यो जहान बनना और नेक्स्ट माय नेम इज यासीन फ्रॉम बन्नो कैसे हो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे डेरा मनना यासीन मैसेज के बोले बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह तुझे दुआ गानी नेक्स्ट सलाम ब्रदर

और विच इज द स्तादी दस्तरगो इशारावी स्तादी दस्तरगो इशारावी कदबानो पो सुकु सर्वी दरबशमा डेर मन्ना थैंक यू ग्रेट मलिका इकरा वजीर वेलकम एंड सलाम एंड थरापी वेलकम डेर मन्ना थैंक यू ग्रेट मलिका मैसेज के वाले हजी मैसेजेस यूं थी खुद कोशिश करूं ची द टूल शामिल कौन सलामुना तारिक भाई संग ये दाखो फ्री सिमिस

और बल से मैसेज कर दे। सर हमारे मुआशे में लोग अच्छा जी सना हटक मैसेज कर सही डेरा मनाना सना हटक यू जहान बनाना दा सोर तवाई कना ची डेर लेंथी टॉपिक ते दिवर मेंशन ले चरता के प्रोग्राम के जरूर खबर होगी। और दिन लाओ बल्चा मैसेज कर दे क्षेत्र वजीर तो डेरा मनाना कभी बाकी मैसेज चुकुम दा वज नो नशम चुबले वाले जक टाइम देर सर खत्म शुवे नो दे दो वजना सलाम सर जी वेलकम पखीर दागले दा हो जामदा ये एक ना बिल्कुल जामदा है खुई वेले नो जी यही कहना चाहिए खानिया वफा एंड फातिमा वजीर सना डेरा मनाना लो ये खजे शी डेरा मनाना के उसी प्रोग्राम को मैसेज बको यू जहान बनना सो बिल्कुल पखीर की युवा संदर अब लेके भी और दब अभी दसों से ठोले बनो बंदे खजी कम युवा संदर अब लेगी कम युवा संदर अब लेगी नो युवा संदर अब बिल्कुल प्ले केवी पाखेर के औदा बबी तो से ठोले पर नो मंदे नो एंजॉय केवी दागा सॉन्ग

सो बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है और एंजॉय कीजिएगा ये सॉन्ग लास्ट में। सो तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, और उन तमाम खामोश लिसनर का भी बहुत शुक्रिया जिसने प्रोग्राम खामोशी से सुना। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आज रात दोबारा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक छह प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा।

सो बिल्कुल मिलते हैं आज जरा दोबारा 10 से 12 बजे तक, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

जी जनाब, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फमाकिन बाजार से इंसाफ जनरल स्टोर सरा मिला दुकान नंबर 22 मार्केट नंबर 13 टिकंदूर नुमा दो सलीम खाना बिल्कुल जी मकीन बजूर वाला खलक यानी आस पास इलाके खलक दाम इंसाफ जर्नल स्टोर ता जोन वरसी ची दिकून नंबर 22 मार्केट नंबर 13 सलीम खान भाई ता जोन वरसी और जनाब दावते हम शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

रजशा कॉस्मेटिक सामान मार्केट में रख सारे कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मार्केट में रख जाहिद जनाब दल तक यहाँ पाकिस्तान मार्केट में रनशाह से दिखाना शारजा जनरल स्टोर में रनशाह प्लाजा और दुसली शे जनाब नजीब कॉस्मेटिक्स दुसली और अहमद नाज दुसली शे हाँ तो सीधा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट में लग जाए जनाब रजमक शे आमिर शाहजेब जनरल स्टोर रजमक और शाहजक जनरल स्टोर रजमक इब्राहिम जनरल स्टोर रजमक हाँ शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट अवेलेबल दी और जनाब पमकीन से इंसाफ जनरल स्टोर दुकान नंबर 22 मार्केट नंबर 13 सलीम

जेफा कंपनी शिफा तिल पहार जी के चार कवि पहार दर्द के चार कवि चीन को देव छेल अड्डी की चुपकी मुखर्श भी आगे के कार कवि देना इलावा खुरश के चार कवि खुरश हमरा कवि देव छे ताले दिसवी जी आगा हटी कवि नो जरूरी ट्राई की जरूरी इस्तेमाल के खुजेफा कंपनी शिफा तेल हम और बला खबर अदा छे स्किन पॉलिश तो से गोड़े नो खुजेफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश इस्तेमाल के शैम्पू तो से लटवाई नो खुजेफा कंपनी द्रे किस्म शैम्पू दी दवरी जे शैम्पू द प्यूज शैम्पू और कलवन जे शैम्पू चे किम मुफाश वेगा इस्तेमाल के देसर आर जे शायद खान कवेर के इजाजत सब वो बजे ब्यादर सलाम मुलाकात कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: Chit Chat Show.
2: La la la la la la la. La la. That's the program. Chit Chat with Tariq Aziz. Tariq.

मुझे तो पता नहीं था कि आप प्रोग्राम के लिए आए हैं। अच्छा जी, लेकिन आयशा ने बताया है कि अच्छा जी डेरा मना ना आयशा खटक फ्रॉम पिशावर, डेरा मना ना मैसेज के बोले तारिक भाई सच्चे। अच्छा जी सही है, डेरा मना मुस्कान खटक मैसेज के लिए डेरा डेरा मना ना। भाई सलाम टू नादिया बहार, उजाला मरवत, सुंबल, फातिमा, हफ्सा, नोरन, एनी, सलाम टू ऑल साइलेंट पीपल में डॉक्टर मानो महानोर, डेरा मनाना यो जहान मनाना कभी डॉक्टर महानोर डेरा मनाना मैसेज के बोले प्रोग्राम की शिरकत के बोले यो जहान मनाना। बेन लवा रिफत खचक मैसेज करे दे खरक शकी लवा गवर्दन के तरक लला हर कले वे मात होता और स्पेशल सलाम टोलू और रिदुन कुता। यो जहान मरना रिफत खचक डेरा डेरा मरना सुबह भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।

0: और हमेशा मुस्कुराता रखी अमीन। मैं आपकी छोटी सी सरामना हटक देर वनना लो या हजर से थैंक यू मैसेज के वाले डेरा वनना किसी काल बने से बलसो को देखिए हमदना दे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जी सो खबर के के मदना
1: सुलेमान खबर को सबस कर दिना
0: सुलेमान।